सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: गुड मॉर्निंग मैम।
4: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा जय किशन।
4: कहाँ से बात करो सर?
3: मैं गंगापुर सिटी डीआर गार में।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मूवी का नाम है राज, आपके प्यार में सवरने लगे।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना। हेलो

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका बोल रहा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: सवाई माधोपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये दिल कितना पागल है तुझे ये आवाज देता है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: नमस्कार जी
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मार गई मुझे तेरी जुदाई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर।

0: फरमाइश करिएगा।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन, कहाँ से बात कर रही? जंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जुदाई पिक्चर का।
1: ओके।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैं।
0: धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका?
1: रूपचंद गोयल।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है आई मिलन की रात और गीत के बोल है इश्क का रोग लगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

तेरा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। पहली रात को बिल्ली मार लेना, दूल्हे की शरारत से बच के रहना।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम है, मैं जीआर गारमेंट से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये गाना है अभी आया नया नया अमित सैनी का, खलनायक।
1: खलनायक,
0: हाँ नया गाना आया अभी।
2: मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैम राधे राधे, कैसे हो आप?
3: ठीक है सर।
2: मेरा नाम राम सिंह है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: ये गंगा जमुना सरस्वती का गाना है, वो साजन मेरा उस पार है।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैम थैंक यू।
3: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कितना मुश्किल है इस दुनिया में दिल लगाना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: इनकी मां ही गायिका।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:41 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475 पर कॉल करें, पुनः प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: मैंने जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: अरे आज मुझे सुना दो फिल्म वापस का गाना, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।
1: ओके मैम,
2: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: बताना
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मुझे गोया सुनाई तेरी। हाय हाय।
0: हेलो,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, आ रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: हेलो
2: जी, जय। हाँ जी, नमस्कार
0: सर। नमस्ते, नाम क्या है आपका?
2: नाम आमीन शाह पिघलौदिया।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: तेरे प्यार में सारा आलम।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राधे राधे।
0: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
1: आज धर्म जगह है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर जीटी अंबेडकर धर्मशाला के पास से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना तेरी मुरली दिल ले गई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: ठीक है।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: स्नेहा।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जैस्मिन संलास का पिंजरा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जीतू सिंह।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बापू शेर तेरा।
0: बापू शेर तेरा। ओके सर, सुना रहे हैं आपको फरमाइश पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: जी आर गारमेंट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कुछ खोना है कुछ पाना है, परदेसी बाबू पिक्चर गाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: धंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम गुजर जाते।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना सर यह है, एक था दिया एक थी बाती।
1: एक था दिया एक थी बाती।
0: जी जी
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: फिर भी उसने ये कहा, ज्योत को दी ये दुआ, तुझको कोई
1: गम ना हो। क्या है सर आपका?
2: रवि सुना।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हो? गंगा पटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: तेरे प्यार में सरेआम बदनाम कर दिया मुझे।
1: किसका सुना रहे हैं आपकी सर?

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद यासीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: पाल से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना?

0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: जी योगेश जांगरे।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ब्लैकमेल से सुनवा देंगे, पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: ओके सर, सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: ने सारी फ्रेंडशिप बैंड्स।
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: लाओ दो, ये लो। मैं

0: क्या है आपका?
1: अनस मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जानापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: देवा।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जग सुना सुना लागे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए मैम। हेलो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radio_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए हम तैयार हैं।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
6: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
5: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
7: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
8: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2027।

0: पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: राज फिल्म का है, राज फिल्म का आपके प्यार में हम सवरने लगे।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:10 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नमस्कार, मेरा नाम लतीफ अहमद रीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: कश्मीर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मिशन कश्मीर।
0: गाने के बोल।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सोनापुर सिटी।
0: कौन सा गाना?

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आपने कभी गौर किया है हमारे बड़े बूढ़े कितने खुश रहा करते थे और हम हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो वो डेली करते थे, जैसे कि कथाएं सुनना, और उन कथाओं से वो बहुत कुछ सीखते थे। पहले तो ये भी होता था कि परिवार के सभी सदस्य दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा बैठ जाया करते थे और प्रभु के ऊपर बातें किया करते थे। आज के जमाने में ये सब बोरिंग माना जाता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो एक तो आप सीखेंगे भी बहुत कुछ और दूसरा एक दूसरे को वक्त देना शुरू करेंगे, जो कि आज हम लोगों के लिए दे पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है शुरुआत में, लेकिन अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आज सुबह की शुरुआत इसी सोच से कि हम अपनों को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: परीक्षा का समय आ गया है और इस वक्त पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। मैं हूँ आरजे खुशी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आया करती थी और मैं समझ सकती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आती है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो, ये बात तो ठीक है कि सर्दियों में इस टाइम पे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरीके से हम खुद को संभाल पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कोशिश करें कि सूरज में जरूर बैठे। कई बार ये विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली सूरज के नीचे बैठेंगे, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आलस बहुत ज्यादा आता है, तो दो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो दिन के वक्त आपको नहीं सोना है, और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। और एक इससे भी जरूरी चीज, हम लोग सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सर्दियों में। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजी खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर धो के नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगे कल इसी पते पर इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।
0: रेडियो डीएस।
2: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। में आपका रेडियो दोस्त रेसी बिना। दोस्तों, दोपहर के एक बज चुके हैं। अभी आपने जो कार्यक्रम सुना है लू फरमाइश, अब आरंभ करते हैं बहुत जल्द आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा और उसके बाद सुनेंगे चटपटी बातें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशी अग्रवाल। आज आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के अधिकार। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं का पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों समान हैं। हमारे अगले अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(3). यह एक विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कानून या सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देता है, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा या नौकरियां, संसद में आरक्षण। महिलाओं के लिए अगला अधिकार है रोजगार में समानता, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों या रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। किसी भी महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर अपात्र नहीं माना जा सकता। हमारा अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध और जीवन का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड लाइफ। अनुच्छेद 21, सम्मान से जीने का अधिकार। यह हर नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। न्यायालयों के अनुसार इसमें महिलाओं को गरिमा और सम्मान के साथ जीने, गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा माहौल का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी पर रोक। यह अनुच्छेद महिलाओं और बच्चियों की खरीद वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम या वेश्यावृत्ति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सरकार को नीतियां और कानून बनाते समय लागू करना होता है। अनुच्छेद 39(a), राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा जिससे पुरुष और महिला दोनों नागरिकों को आजीविका, लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन समान रूप से मिल सके। अनुच्छेद 39(d), समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक जैसे काम करने के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। सरकार कार्यस्थलों पर काम करने के लिए मानवीय अनुकूल माहौल तैयार करेगी और कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व राहत, मैटरनिटी बेनिफिट लीव का प्रावधान करेगी। हमारा अगला अधिकार है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक राइट्स। अनुच्छेद 243(d) और 243(t), पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण। स्थानीय निकायों महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक राइट्स। इन संवैधानिक अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कड़े कानून भी बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉस्ट 2013 और मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी लीव एक्ट। थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम रोजगार और महिला सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है महिला उद्यमिता और रोजगार। दोस्तों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोजगार और व्यवसाय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म सम्मान भी देता है। आत्मनिर्भर महिला, मजबूत परिवार। जब महिला रोजगार से जुड़ती है तो वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर बना सकती है। आर्थिक रूप से मजबूत महिला परिवार में निर्णय लेने में भी आत्मविश्वास महसूस करती है। रोजगार के बदलते अवसर। आज महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पहले से कई अधिक बढ़ गए हैं। ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षण बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और छोटे उद्योगों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे व्यवसाय से बड़ी सफलता। कई महिलाएं छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करती है और धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल करती है। घर से शुरू किया गया छोटा काम भी मेहनत और सही योजना से बड़ा व्यवसाय बन सकता है। कौशल विकास की आवश्यकता। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी है। यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण मिले तो वे आत्मनिर्भर बन सकती है। कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की सफलता। गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। वे बचत कर रही है, छोटे व्यवसाय चला रही है और अपने परिवार की आय बढ़ा रही है। यह बदलाव ग्रामीण समाज को नई दिशा दे रहा है। चुनौतियां और संघर्ष। महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समाज की सोच, संसाधनों की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके रास्ते में बाधा बनती है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से महिलाएं इन चुनौतियों को पार कर रही है। तकनीक से बढ़ती संभावनाएं। आज इंटरनेट ने महिलाओं के लिए दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए हैं। महिलाएं सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। महिलाओं को वित्तीय ज्ञान जरूरी। महिलाओं को बचत, बैंकिंग और निवेश की जानकारी होना भी जरूरी है। वित्तीय जागरूकता उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाती है। परिवार और समाज का सहयोग। यदि परिवार महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा तो समाज तेजी से प्रगति करेगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उनके सपनों को भी महत्व देना चाहिए। प्रेरक संदेश। दोस्तों, हर महिला में कुछ नया करने की क्षमता होती है। जरूरत है सही अवसर, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास की। यदि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों मजबूत होंगे। धन्यवाद।

नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से। आप सब सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम बेटियों की शिक्षा का महत्व, शिक्षित बेटी उज्जवल भविष्य। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज के विकास और देश की प्रगति से सीधा जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बेटियों की शिक्षा का महत्व। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह बात केवल कहने भर की नहीं है बल्कि समाज की सच्चाई है। हमारे देश में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, प्रशासन और व्यापार तक। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई जगहों पर बेटियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी बेटों को दी जाती है। कुछ परिवारों में अब भी यह सोच मौजूद है कि बेटियां केवल घर संभालने के लिए होती है। यही सोच बेटियों के सपनों को सीमित कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा केवल पढ़ना, लिखना या सीखने का माध्यम नहीं है। शिक्षा इंसान को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है और समाज में आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती है। शिक्षा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता रखती है। बदलती सोच और समाज। आज समाज बदल रहा है। लोग समझने लगे हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। हमने देखा कि बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी और सेना में भी देश का नाम रोशन कर रही है। यह सब संभव हुआ है शिक्षा की वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियां। हालांकि शहरों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई चुनौतियां मौजूद है। कई लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होता है।

कुछ जगहों पर सुरक्षा और सामाजिक सोच भी बड़ी बाधा बनती है। कई बार छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और हमें यह समझना होगा कि बाल विवाह किसी भी लड़की के भविष्य को सीमित कर देता है। सरकार की पहल, सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है, ताकि बेटियां स्कूल जा सके। माता पिता की भूमिका, बेटियों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास करे और उसे आगे बढ़ने का अवसर दे, तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकती है। हमें बेटियों को यह महसूस कराना होगा कि वे परिवार पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत है। शिक्षा और आत्मविश्वास, शिक्षा बेटियों में आत्मविश्वास पैदा करती है। एक शिक्षित लड़की गलत और सही में फर्क समझती है, वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती है। शिक्षा महिलाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। समाज में बदलाव की जरूरत, दोस्तों केवल सरकार की योजनाओं से बदलाव नहीं आएगा, समाज की सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यदि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। हमें लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करना होगा। प्रेरणादायक उदाहरण, आज देश की कई बेटियां दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। खेलों में, विज्ञान में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर वे किसी से पीछे नहीं रहती। धन्यवाद।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ईश्वर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रिसीवना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी आपने सुना नहीं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादों को। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: व्यवस्था प्रशिक्षित अधिक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
0: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
0: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा।

आपके रेडियो प्रसारण के लिए संशोधित एवं प्रसारण योग्य स्क्रिप्ट रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति रेडियो दोस्त इशिमीना एवं रेडियो DS टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक एवं आदरणीय डॉ उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय डॉ उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी,

ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो डीएस टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक के आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। आपके मार्गदर्शन ने हजारों युवाओं को सही दिशा प्रदान की है। समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आपकी सादगी, समर्पण और कम निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उमेश कुमार शर्मा जी, संस्थापक डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशिमीना, दीपा शर्मा एवं रेडियो डीएस 89.6 परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.
0: Sunte rahiye dil se dil tak 89.6 DS FM pe.
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो डीएस टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक एवं आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। आपके मार्गदर्शन ने हजारों युवाओं को सही दिशा प्रदान की है। समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आपकी सादगी, समर्पण और कम निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उमेश कुमार शर्मा जी, संस्थापक डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशिमीना, दीपा शर्मा एवं रेडियो डीएस 89.6 परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई।
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे बोली विसरी यादें कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो डीएस टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो डीएस टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक के आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। आपके मार्गदर्शन ने हजारों युवाओं को सही दिशा प्रदान की है। समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आपकी सादगी, समर्पण और कम निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उमेश कुमार शर्मा जी, संस्थापक डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशिमीना, दीपा शर्मा एवं रेडियो डीएस 89.6 परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्मदिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति। रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो डीएस टीम, नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक के आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। आपके मार्गदर्शन ने हजारों युवाओं को सही दिशा प्रदान की है। समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आपकी सादगी, समर्पण और कम निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उमेश कुमार शर्मा जी, संस्थापक डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना, दीपा शर्मा एवं रेडियो डीएस 89.6 परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: BS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या YouTube पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

20 मिनट का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्य

0: हेलो
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: नाम क्या है मैम आपका?
0: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: जो प्यार करता है वो पागल हो जाता है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रद्धा सिटी मथुरा सिवा का लाभ कर रहा हूँ।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ गीत है, ये इश्क है क्या।
1: ये इश्क है क्या
0: जी।
1: आपकी सर्वाइव करेगा ना रेडियो, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते नमस्ते।
1: नाम क्या, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म गाने के बोल है एरी पवन ढूंढे तुझे तेरा मन।
1: गाने के बोल है सर, है ना?
0: हाँ गाने के बोल है एरी पवन ढूंढे तुझे तेरा मन।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: कॉल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बिन लड़ो साथी जाने पड़ेगा।
1: कौन सा सर?
0: राजस्थानी है मैम। बिन लड़ो साथी जाना पड़ेगा।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नाम क्या है आपका?
1: खंडेराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव भट्टा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना ये सर, तेरे संग संग आया तेरी यादों का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मैं नाम बोल रहा हूँ,
1: ये कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गल्लापुर डी एस आई सर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे थे?
0: हमने ही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था।
1: एक से सुना रहे।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नंदिनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम मैडम रितिक शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापति से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चंबल की नाकू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, विशेष जन्म दिवस शुभकामना संदेश प्रस्तुति, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं रेडियो DS टीम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो DS गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जागो समाज, बदलो समाज। आज का ये विशेष शुभकामना संदेश समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा, संस्कार, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम सभी की ओर से DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के संस्थापक एवं आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका जीवन ज्ञान, संस्कार और सेवा का अनुपम उदाहरण है। एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। आपके मार्गदर्शन ने हजारों युवाओं को सही दिशा प्रदान की है। समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आपकी सादगी, समर्पण और कम निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी के रूप में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उमेश कुमार शर्मा जी, संस्थापक DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना, दीपा शर्मा एवं रेडियो DS 89.6 परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन यूं ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता रहे तथा आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहें। एक बार फिर आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

यार बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यार बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यार बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एसडी बर्मन ने फिल्म तलाश, बंदनी, अमर प्रेम आदि फिल्मों में भी गानों को अपनी आवाज दी। उनकी प्रमुख फिल्में मिली, अभियान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता और टैक्सी ड्राइवर थी। 1969 की फिल्म आराधना में भी एसडी बर्मन का ही संगीत था। इस फिल्म से एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ। वहीं गायक किशोर कुमार के करियर को भी नई ऊंचाई मिली। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

अच्छा एक बात बताओ कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आंदोलन? अरे नहीं, ये वाला नहीं, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और मूवमेंट से मेरा मतलब था आंदोलन नहीं, हरकत। हरकतें हम जब बॉडी मूवमेंट करता है, बॉडी हरकतें करती है, वो हरकत क्यों बता रहा, क्योंकि एक फैक्ट के मुताबिक हर सेकंड मैं और आप, हम जैसे नॉर्मल इंसान, हर सेकंड में हमारी जो आंखें होती है वो 50 मूवमेंट्स करती है, यानी हर सेकंड हमारी आंखें 50 अलग अलग प्रकार के हरकतें करती है। लेकिन जब यही रिसर्च भैया गंगापुर सिटी के कुछ लड़कों पे हमने किया तो पाया क्या कि उनकी आंखें 500 तक भैया मूवमेंट करती है हर सेकंड में जब वो अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के सामने होते। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिलहाल आप बैक टू बैक अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अच्छा अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ट्यूलिप का फूल दे दो। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और हिंदुस्तान में तो भैया अगर आप पैसे के बदले ट्यूलिप का फूल दोगे तो आपको फिर डिशु। लेकिन अगर आप हॉलैंड में पैदा हुए होते, लेकिन साल 2024 नहीं, साल 1634 में अगर हॉलैंड में पैदा होते तो शायद ये काम करते, क्योंकि उस साल हॉलैंड में वहां के लोगों ने ट्यूलिप के फूल को नेशनल करेंसी बना लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

अगर आप इंसान हो और ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो मुझे नहीं पता उससे कोई फायदा हो भी रहा या नहीं, लेकिन अगर आप गाय हो यानी कि मो काओ तो फिर तो फायदा है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले काओ

यानी कि गाय अगर ज्यादा म्यूजिक वो सुनते हैं तो फिर वो ज्यादा दूध देती है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्वाले तक पहुंचाओ, क्योंकि वो हर रोज आपको दूध में पानी मिला के दे रहे। बोलो भैया प्लीज पानी मिलाना बंद करो और अपने गाय को म्यूजिक सुनाओ। फिलहाल आप म्यूजिक सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो DS
2: पसंद रांची है लाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी के घर पर
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस ट्यून इन किया आपने 89.6 रेडियो डीएस। और थोड़े दिन पहले ही जापान में भूकंप आया था, उसी पे मैंने रिसर्च किया और पाया कि भूकंप को कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उन्हें सांप यानी कि स्नेक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब भी अर्थक्वेक आए उससे वो 75 माइल पहले ही पहचान लेते कि अर्थक्वेक आने वाला, और कई बार तो 5 दिन पहले भी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब गंगापुर सिटी में अगर आपका कोई दोस्त प्रेडिक्ट करे कि अर्थक्वेक आने वाला है और अर्थक्वेक आ जाए तो वो आपका दोस्त नहीं, वो सांप है। फिलहाल गाने सुनो, बैक टू बैक 4 गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं।

Yeah.

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रोडजस्ट आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।